हेडधारी एक्सेस समय गहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.hedhari.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको हो। बिहान 6:45 बजे को खबर में ब्रेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य खबर।

रविधारिङ एक्सेस समय गहर्स के साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.rabidharing.org मार्फत संसार भरे के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजे को खबर में म वेकको नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य खबर

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: यसै गरी हामी शिवम सिमेन्ट ले पनि क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो वाचा पूरा गर्दै फिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा शिवम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज
1: आज को बचत भोलिलाई राम्रो भविष्यको सपना।

0: पाइनुका साथै पुरानो मोबाइल लिएर नयाँ मोबाइल पनि साटिन्छ।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिङदेशी मिलन टोल लेकाली टिकट काउन्टर सँगै प्रोप्राइटर ईश्वर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841063130 र 9813180307।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक आइने ठीक 5 बजे को छा
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले साझा को 5 बजे

को ढाली का एक युवा पशुआ में पुतला निस्कने अंक ने घट्यो। प्रधानमंत्री एक हफ्ता भित्र संसद में उपस्थित हुने राष्ट्रपति को भनाई किसान के क्षेत्रफल का आधार में रासायनिक मल पाउने। यसका साथै खबर यति नै। भोलि बिहान 7:45 बजेको खबर लिएर आउँछु। प्राविधिक मित्र विकललाई धन्यवाद दिँदै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म ब्रेक बिदा हुन्छु। नमस्कार।